0: ଯାହା ସହଜଲବ୍ଧ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ସବୁଦିନ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମନୋଜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का

0: रेड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनुछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकको दिल से दिल तक। वर्तमान सुनन्तु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 40 तम भाग।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों

0: के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
1: Recognizing the ambitious
2: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अनुसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
1: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
3: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
4: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी

0: शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है।

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक

0: विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RGKR Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined the stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 million जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 तक हमने 500 gigawatt clean energy और 5 million ton green hydrogen produce करने का target रखा है। Clean energy investment नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
2: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Earlier, in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West in the Ministry of External Affairs C.B. George said that India welcomes the decision by Norway to join the Indo-Pacific Oceans Initiative, as both the countries are leading maritime nations.
4: recognizing the ambitious maritime Amrit Kaal Vision 2047 of India.

हर किसी के सपने हैं, हर किसी के सपने हैं, हर किसी की कहानी है। बस छनक से ही पहचान लो, इन घुंघरुओं की दास्तान पुरानी है।

मॉर्निंग मेलोडी चाली ची म्यूजिक मित्रानो सह केवड़ा केवड़ा 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे दिल से दिल तक आपण आमको सुनी परचंती न्यूज ऑन एआईआर आप माध्यम रे भी तुम ही से है जो जितना है, तुम ही से है जो जितना है, सब तुम्हारा ही तो भाई। बना लो घुंघरू पायल का, बना लो घुंघरू पायल का, न चालो जितना जी चाहे।

मीठी मीठी बातों के साथ ये झंकार पायल की मीठी सी, हम सब कुछ भूल जाते हैं कुछ पल के लिए जब तुम आते हो सामने धीरे से, पायल की मधुश मधुर आवाज लिए। ये घुंघरू भी ना चैन से जीने देते हैं ना सोने, बस इनकी छनकती खनकती आवाज बस ऐसे ही सुनते रहे ऐसा लगता है ना।

याद मेरी अब ये किसको बहलाएगी, ये पायल किस आंगन घुंघरू बजाएगी। घुंघुर गोटे इमिति प्रतीक जहा संगीतर ताले ताले नृत्य सृष्टि करे एवं संगीत सह तार एभली संजोग एभली जुगलबंदी जहा सृष्टि करे अपूर्व लास्य अपूर्व छंद तोड़ी उठे ए घुंघुर सकाशे।

0: हेलो हाँ, आज टॉपिक ऊपर कौन कहिबे? हेलो
1: आवश्यक स्थले व्यवहार करिया
0: निश्चय निश्चय
1: आवश्यक नाही व्यवहार करिया आज मन इच्छा स्विच मारे बुलदबा आम खाली पैसा दबा आज शक्ति नष्ट होगा
0: निश्चय निश्चय खूब भल कथा आवश्यक
1: स्थले गोटे जिनस केयार नवा केयार मन भितर गोटे केयार जिनस रहिले ताले रहिबो
0: नमस्कार। तो ये राजेन्द्र नना नुआगाँ कटक जमीती से कहले आवश्यक स्थले व्यवहार करंतु जदि आवश्यक नहीं तबे निश्चित रूपे शक्ति अपचय अंत करंतु नहीं तो देखना किए कर हेलो
2: शुभ सकाल मेरे मित्र अनुमा नमस्कार
0: नमस्कार मुन्ना भाई कहते जगत सिंहपुर
2: धन्यवाद मुन्ना पंडा कटिला कनकपुर दर्शन करदे आज ठीक 15 दिन मंगला आसते 7 तारीख रे
0: आप मन रखी बस हाँ
2: दिन चाड़ी आप 5 तारीख 6 तारीख विश्वजित भाई 7 तारीख आप आसते पुणी आज
0: अच्छा ठीक अच्छे पुणी देखा है गला केमती अच्छा प्रथम कहतु
2: मु तो सब बिंदास थाए आशा होती माँ सारा आसान बिंदास खुश था मत बढ़े रखि था
0: बहुत बहुत धन्यवाद तेज आज टॉपिक उपर कौन कहे
2: देखते टॉपिक उपर समस्त तो कहले गोटे कथा मुझे सत कहू मु सब ध्यान दिए ना
0: अच्छा
2: ना ये सत कथा कहीं कहीदे कि कम करे मुझे सत कथा मुझे कहीदे मु सब ध्यान दे पारे कहीं सब सामान न था समय कि गोटे मुझे ध्यान देती कौन जीक इलेक्ट्रिक जिनस लगे सब हलमार्क लगती कहीं देखते 3 मास 4 मास थे इलेक्ट्रिक देखा पड़े तार देखा पड़े देखा आम शक्ति बहुत अपचय होती देखिए न कराया आम खाली फैन स्विच टा बंद करदे हमी आम सब हलमार्क जिनस आने निश्चिंत शक्ति संचय कम
0: हाँ
2: आम कौन करते जहाँ पाते शस्ता देखे आनी लगे दौते कि दिन गल कार्बन सेवाटे किसी
0: जाऊँगी
2: गोटे देखु आम कह बहुत फरक रोच आम जो विजय भाई कल से जहाँ कले ठीक कथा 40 समस्त कल समस्त जीवन बीमा कर
0: खूब सुंदर भल
2: आम घर गोटे जीवन बीमा कर
0: अच्छा ठीक अच्छे किसी कथा नहीं बहुत बढ़िया लगे भाई आप सहित कथा ही रही नमस्कार
2: बहुत भल लगे आज 4 सब बहुत बढ़िया लगे आप सबटा बहुत भल
0: ओके रही नमस्कार
2: नमस्कार।
0: तो ये मुन्ना भाई जगत सिंहपुर जमती कहले केवल कहले हबनी माने कथा खाली कहले हबनी करिके देखिबाक पड़िबो तो निश्चय समस्ते शपथ नियंतु शक्ति केमती अधिक रु अधिक आम संचय कर संपर्क में आहरी बहुत किसी कथा हवा हेले ता पूर्व नवा गोटे छोटिया म्यूजिकल ब्रेक दिल से दिल तक यू स्टे ट्यून 200.4 आकाशवाणी FM रेडबुक अटैक।

0: हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते कौ कहते
1: संध्याराणी सुतर फ्रम पट्टामुंडी मठसाई
0: केमती अच्छा
1: भल अच्छे खरा तो हूँ
0: अच्छा बहुत बढ़िया आउ आज टॉपिक ऊपर कौन कहिबे
1: टॉपिक बहुत भल टॉपिक रखी अबिका समय खरा समय शक्ति संकट बहु परिमाण एक जल संकट द्वितीय

0: सुन चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु आज रही आपणक सहित नई डायल इन लाइव चिटचैट आउ आज टॉपिक रही केमिति करछंती आपण निज घरे शक्ति संचय तो आग को बढ़िया देखने वा किए करछंती कॉल हेलो हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: नमस्कार किए कहछंती कोठ कहछंती
1: प्रकाश मेरे गबल गोपुरु
0: केमती अछंती प्रकाश
1: हेलो
0: आज रो टॉपिक ऊपर कोन कहबे
1: टॉपिक ऊपर कोन कहबे बेसी आमे जळगु नष्ट करछी जो पानी
0: कष्ट जल गोटे जिनस जोटा कि मानते खास कर पीवा पानी बहुत लिमिटेड नष्ट आग को पीवा पानी समस्या बेसी देखा नहीं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपणको रहिली नमस्कार तो ये थिले गोप्रु प्रकाश बेहरा एवं भल कथा से उठेले जे बहुत पानी नष्ट होउची आ पानी को केमती आमे संरक्षण करबा से संपर्क रे से चिंतित अछंती आई होप कि समस्ते एक कथा भाबीबे मानिबे आ पानी को अजथरे नष्ट करिबेनी तो देखिनबा के करछंती कॉल हेलो नमस्कार के

सुन रहे हैं 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनुरहिचा जे आपन को सहने रेनबो एसएमएस और रेनबो एसएमएस को आपन जदि चाहुचंती वार्ता पठेया पई माने निज मनपसंद रो गीत किछ जदि सुनिया को चाहुचंती तबे हम पख को लेखि पठे परिबे टाइप करंतु एफएमआरसी स्पेस दे निज फेवरेट गीत रो प्रथम लाइन लेखंतु स्पेस दे निज रो जो फेवरेट गीत रहिचे सेटा क्यों फिल्म बा एल्बम तार ना लेखंतु एवं स्पेस दे निज ना एवं ठिकाना लेखि सीधा पठे दियंतु 09495962101 ए नंबर रे 88952542000 एटा होची हमर व्हाट्सएप नंबर सेठि मध्ये मेसेज करि परिबे कथा दउछु चेष्टा करिवु सुनि देबा को आपनकर मनपसंद रो गीत तबे जमशेदपुर झारखंड रु देवेंद्र तांती राकेश तांती प्रकाश निशा कुमारी रेशमा कुमारी दीपाली कुमारी देवेन जी सुनिबा को चाहिचंती चलचित्र हिंदी चलचित्र बलमा रो गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक जहाँ गाई आशा भोंसले और कुमार सानू तो चलन तो सुनिबा गीतटी

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: परवर्ती गीतटी रिक्वेस्ट करिसंती सोमनाथ साहू जिगरण पटामुंडाई केन्द्रापड़ारु एवं सुनिबा को चाहिसंती शंखा सिंदूर चलचित्र रही गीतटी एवं लिखिसंती प्रेजेंटेशन मॉर्निंग ट्रांसमिशन प्रोग्राम आर सो ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच एवं लिखिसंती जय जगन्नाथ हैप्पी ट्यूजडे टू आवर ऑल आरजे एंड लिसनर्स ओके थैंक यू सो मच आपणक मंगलवार भी मंगलमय हो ए शुभकामना सह शुणी दौर आपण मनपसंद गीत ही नि

प्रेमजी भाई सीडीए सेक्टर 7 मरकत नगर कटक रु सुनिबा चाहे चंती मैंने प्यार किया चलचित्र गीत चलत सुनिबा।

0: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନରଗୌଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେଶପୁରୀ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଡିମ୍ପଲ ମୀନାକ୍ଷୀ ନିଶା ତୁଲସୀ ଏବଂ ଦିଶା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତରାନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟ୍ରାକ୍ ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ जय जगन्नाथ आज का प्रोग्राम और गीत हमें बहुत पसंद आ रहे हैं जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है सफल प्रस्तुति के प्रस्तुतकर्ता जी को शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं ओके थैंक यू सो मच और लिखे हैं सबसे पहले सभी आरजे और स्मृति मैम को सब प्रेम नमस्कार तो स्मृति मैम को आप बहुत मिस कर रहे हैं बहुत जल्दी आएंगी वो भी फिलहाल अनु आपका जो भी शुभकामनाएं आपने दी वो सब प्रेम हमने एक्सेप्ट कर लिया है थैंक यू सो मच और लीजिए आपका गीत आपके पास पहुंच रहा है लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद दिल से दिल तक
1: सावित्री मो ऑफिस जाऊ छी
2: निया ए मासर इलेक्ट्रिक बिल भरी दबो
1: बाप रे इत्ते टोका
2: मु तो कहू छी सोलर पैनल लगे दबा मासकु 300 यूनिट पर्यंत बिल बंची जीवो
1: सेथिरे केते खर्च हेबो जानी छ
2: काई चिंता करू छ सरकार सब्सिडी देउछंती परा
3: आज्ञा हां पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती pmsurjaghar.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु

वेलकम ब्याक वन्स अगेन ट्यून करछन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी कलाकार हां साथी आमे कथा होथिले मोहम्मद रफींका विषय रे मोहम्मद रफींका जन्म 24 डिसेंबर 1924 मसीह रे पंजाब रो कोटला सुल्तान सिंह ग्राम रे होइथिला

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी कलाकार रफिंक प्रथम संगीत पंजाबी चलचित्र रेकर्ड होइथिला परे से मुंबई को जाई हिंदी सिनेमा रे अवसर पाइथिले आरंभ रे से छोटे छोटे गीत गाउथिले किंतु तांकर स्वर रो अलगा परिचय शीघ्र ही समस्त मन को आकर्षित करथिला हां साथी संगीत निर्देशक नौसाद तांको बड़ अवसर देथिले बैजू बावर चलचित्र रे गीत गुडीक रफिंक को ख्याति रो शिखर को नै जाइथिला तांकर भावपूर्ण गायन दर्शक मानक हृदय को स्पर्श करथिला यहाँ परे परे से पछ को खुंची देखिबा को पड़ी नथिला तांको

0: ସାଥୀ, ସେଇ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆମକୁ ଛତା। ଛୋଟ ଜିନିଷଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଥୀ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଛତା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ। ତେବେ ସାଥୀ, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए

0: यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement.
3: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को

0: The minimum temperature were in the range of around 27 degrees Celsius. As of yesterday, 44.6 degrees Celsius was recorded in the Ridge Area Station of IMD. Safdarjung Station recorded 43.4 degrees Celsius, Lodhi Road Station 43.8 degrees Celsius, and 43.5 degrees Celsius was recorded at Palan Station. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, orange alert for heat wave to severe heat wave conditions has been issued again for the coming week. Banda continued as the hottest place in the country on the second consecutive day with a temperature of more than 47 degrees Celsius. Chief Minister Yogi Adityanath directed district magistrates, the health department, power department and relief agencies to remain on alert mode. More from our correspondent.
2: Apart from Banda, which recorded a staggering 47.6 degrees yesterday, several districts across the state are experiencing severe heat wave conditions, with maximum temperatures hovering near or crossing the 45 degree mark. The Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. PM. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी

0: भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश

0: गीता, भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
1: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।

0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री

0: सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
1: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली मो देश हाँ साथी सतरे मो जन्मभूमि प्रकृति अत्यंत मनोहर प्रभात समय सूर्योदय हेले सबु दिगरे सुनेली आलोक छुटी जाए पक्षी मानकर चिक्की चिरीमिचिरि स्वर शुणिले मनरे खुशी भरी जाए सबुज धान खेत पवन दोहली जाए ग्रामर छोट छोट पथर से शिशु मैंने खेलती से ही परिवेश मो मन को सदा आकर्षित करें हाँ साथी से भरी जेतेबले सूर्य अस्तगामी हुंती से रक्तिम आकाश सहित से सबुज रंगर खेत बेस मन किणी नहीं था पक्षी मानकर।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का देवी

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं होता। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन

ट्यून करी शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक सुरिल आफ्टरनून रे सुदीप आछे आपनका पाखरे कासंगे कथा हला बेले मानुची आमे भाबी चिंती कथा होना मनरे जहा थाए कहिदो किंतु आपनो निजे कोहंतु जे आमे भी जदी से एक्सपेक्ट करिबा जे सामना वाला आमको तो मनखोला कथा कहूची ता कथा काई के धरिबा काई के खराब भाबीबा आमे किंतु समती हुए नी मनखोला कथा हबा किंतु आमे जो शब्द व्यवहार करूचू जो इमोशन व्यवहार करूचू सेथि प्रति टिके सजग रहिबा जेमिति कथाटी शब्दटी कहा मनकु न बाधू

ट्यून करी शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुदीपाची आपणक पाखरे स्टुडिओ घरले समय 5:05 13 सेकंड यस नंबर आपणक कहि देबी एवं कोण कथा बा से विषय भी कहि देबी 0671-230-3153 रे कॉल करि परिबे एवं कहि परिबे जे आपण निज हाथ रे केबे गच्छ लगै छेंती जदि लगै छेंती को गच्छ लगै छेंती केते बडो हेलाणी कोण से विषय रे मध्य शेयर करि परिबे नंबर 0671-230-3153 कॉल करंतु एवं शेयर करंतु गच्छ विषय रे यस निज हाथ रे कोण गच्छ लगै छेंती केते बडो करि छेंती कोण फळ गच्छ फूल गच्छ सब शेयर करि परिबे स्टे ट्यून्ड

0: ट्यून करी शुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिलदायक सुदी पाछे आपणंक पाखरे नंबर 0671230315 रे कॉल करी शेयर करी परिबे केबे निजे हातरे किछि गच्छ लगे छंती की हेलो हेलो
1: हेलो अपन नमस्कार गुड इवनिंग जय जगन्नाथ
0: जय

0: अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र।
3: नमस्कार श्रोता बंधु, संध्या छटार न्यूज हेडलाइंस को आपण स्वागत करुछि। महेश्वर साहू, भारत एवं नक्सलमुक्त बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहते। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में आज श्री शाह यह घोषणा कर नक्सलमुक्त भारत पर जवान बलिदान को श्री शाह प्रशंसा कर। नक्सलमुक्त लड़ाई में प्राणबली जवान ज्ञाति परिजनों प्रति श्री शाह गभीर समबेदना जनाई, एणिकी बस्तर जिला विकास पथरे आगेबो बोली श्री शाह दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। राज्यर अधिकांश स्थानरे आज ग्रीष्म प्रवाह और गुळीगुळी लागि रहिछि। पश्चिम ओडिशार प्राय सबु अंचलरे आज तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करिछि। हीराकुद्रे आज दिन सर्वोच्च तापमात्रा 44 डिग्री सेल्सियस थिबा रेकर्ड करा जायछि। अन्य पक्षरे चलित मास शेष सुद्धा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केरळमरे प्रवेश करिवो बोली भारतीय पाणिपाग विभाग आईएमडी आकलन करिछि। नयागढ़ जिला दशपला ब्लॉक टाकरा पंचायत कार्यालय परिसर में पारंपरिक औषधीय विज्ञान मेला अनुष्ठित हो जायछि। मेळारे 50 अधिक स्टॉलरे विभिन्न चेरमूली आयुर्वेद औषध और यार चिकित्सा प्रणाली संबंध में प्रचार प्रसार कर। संपूर्ण कड़ा सुरक्षा मध्य आज पुणि थे श्रीमंदिर भीतर रत्नभंडार गणति कार्य हो। प्राधिकृत टीम संध्याधूप पर्यंत गणति कार्य कर भक्त केवल बाहर काठ निकटर महाप्रभु को दर्शन कर। चलित मास 9 दिन पर रत्न अलंकार गणति मणति कर। आसंता 21, 23, 26, 28, 29 और 30 तारीख में रत्न अलंकार गणति मणति कर। वर्तमान पर न्यूज हेडलाइंस एति आपण परवर्ती हेडलाइन शुणी संध्या 7।
1: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
0: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
0: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।

ट्यून करिशंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक सुनिबा आजिरो कार्यक्रम संपर्क रे सूचना गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 22तम भाग शुणीपारे संध्या 6टा बजे 10 मिनिट्रे भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना संध्या 6टा बजे 30 मिनिट्रे संध्या आसर शुणीपारे संध्या 7टा बजे 25 मिनिट्रे राति 8टा रे शुणीपारे कार्यक्रम गीतर मितरे अभुला स्मृति शुणीपारे राति 9टा बजे 15 मिनिट्रे राति 10टा रे शुणीपारे कार्यक्रम रेनबो एसएमएस वर्तमान सुनिबा आसंता कालीर कार्यक्रम संपर्कर सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळी शुणीपारे सका 6टा बाजी 5 मिनिट्रे अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 41तम भाग शुणीपारे सका 6टा बाजी 40 मिनिट्रे सका 7टा बाजी 10 मिनिट्रे शुणीबे आमर स्वास्थ्य एथिरे विषय रहिछि आम मस्तिष्क ए विषय आलोचना करिबे डाक्टर रवींद्र कुमार दळाई शुभ सका शुणीपारे सका 7टा बाजी 25 मिनिट्रे सका 8टा बाजी 30 मिनिट्रे शुणीपारे कार्यक्रम मो पसंद सका 9टा रे शुणीबे डायल इन लाइव चिटचाट एथिरे निर्धारित विषय रे कॉल करी आपणक मत शेयर करी परिबे दिन 10टा रे आपणक मनपसंद रो गीत को एसएमएस एवं व्हाट्सएप माध्यम रे अनुरोध करी शुणीपारे कार्यक्रम रेनबो एसएमएस रे दिन 11टा रे शुणीपारे कार्यक्रम कलाकार दिन 11टा बाजी 30 मिनिट रे कितोटी पुराणा हिंदी चलचित्र गीत शुणीपारे दिन 12टा रे शुणीपारे कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत दिन गोटे बाजी 10 मिनिट रे निर्धारित विषय रे आपणक मत आम सहित एसएमएस बा व्हाट्सएप माध्यम रे शेयर करि परिबे दिन 2टा बाजी 45 मिनिट रे शुणीबे कितोटी ओडिया चलचित्र गीत दिन 3टा रे शुणीबे कार्यक्रम मो देश अपराह 4टा रे शुणीबे कार्यक्रम सुरील आफ्टरनून 5टा रे शुणीबे डायल इन लाइफ चिटचैट एथिरे सीधासलख फोन जगे निर्दिष्ट विषय आम सह कथा हे परिबे संध्या 6टा बजे 10 मिनिट रे शुणीबे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीराम चरित मानसर 23तम भाग भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना शुणीपारे संध्या 6टा बजे 30 मिनिट्रे संध्या 7टा बाजी 25 मिनिट्रे शुणीबे कार्यक्रम संध्या आसर राति 8टा बाजी 2 मिनिट्रे शुणीबे सुपरहिट ओडिया एवं हिंदी फिल्म गीत कार्यक्रम गीतरे मितरे राति 9टा बाजी 15 मिनिट्रे कार्यक्रम अभुला स्मृति एथिरे शुणीबे केतोटी पुराणा ओडिया एवं हिंदी चलचित्र गीत राति 10टा रे रहिछि आपणक मनपसंदर कार्यक्रम रेनबो एसएमएस एडि शेष होगा आसंता कालीर कार्यक्रम संपर्क सूचना ट्यून करिसेंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घर समय संध्या 6टा बजे 8 मिनिट 25 सेकेंड संध्या 6टा बजे 10 मिनिट्रे शुणीपारे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 22तम भाग।

0: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
0: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं, वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक। परवर्ती विश ऐसी लेखाई सुदीपापा गुड इवनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा स्टील परिवार तरफ ओडिशावासी को प्यार भरा नमस्कार अपा अच्छे हमारो बड़ भाई रोहित सेन को हैप्पी बर्थडे से बहुत बहुत शुभकामना जनईदेबे लिखुंट आपकी याद आए तो दिल क्या करे अगर याद दिल से ना जाए तो दिल क्या करे सोचता हूँ कि मुलाकात होगी सपनों में आपसे पर अगर नींद भी ना आए तो हम क्या करें। अब नमस्कार आपण को प्रोग्राम बहुत भल लगुच आपण टिके टिके मजा कथा कहउचंती आभा सेन लिखुचंती रोहित सेन राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव टाटा स्टील प्लांट रू टुना भाई रमेश भाई उर्मिला अपा विजय भाई और सबु आर्जे को वेरी गुड इवनिंग लिखुचंती अपा आम टाटा स्टील प्लांट को केबे बुलिबा को आसंत आम प्लांट रे बहुत प्रकार फूल गछ मिलमिश लगेचो निश्चित भाव आज आंब कथा सुनला पर तुम भापुची गोटे के जाके आंब गछ देखा आंब गोटे दिटा नहीं आस बढ़िया लगे ठीक अच्छे आपण मतामत बहुत बहुत धन्यवाद सहित तो आपण भाई रोहित सेन को मध्य हैप्पी बर्थडे एवं बहुत सुंदर शायरी पाई मध्य थैंक यू सो मच। राजेन्द्र नना लेखुचंती नुआगांरु प्रभु हनुमान को प्रणाम करुचे आपणको आशीर्वाद करंतु दिव्य ज्ञान प्रदान करंतु ऑल लिसनर को आशीर्वाद करंतु थैंक यू सो मच आपणको मध्य जय श्री राम एवं आपणको भलो पाइबा आशीर्वाद पाई बहुत बहुत धन्यवाद।

ट्यून करी शुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक स्टूडियो घरे समय राति 8:08 सुधी पाछे आपनको पाखरे गीतर मितर आरंभ हे सलाणी आपन माने सुंदर सुंदर गीत एन्जॉय भी करू छंती ता संगे रे मु श्योर आपन कोडे जाउ छंती नले घरे भारी कष्टकर काम डिनर प्रिपरेशन बिसर भाबु छंती नले आरंभ भी करी देलेनी निश्चित भाव जो खरा दिन संध्या पगटा जो है ना टिके सुलसुलिया पवन टिके बसथे टिके समय हेथबो कि नाही पूनी टेंशन आसवारे राति खाइबा विषय पुनी भाबिबार अछि पुनी करिवार अछि ए सब झामेला भितरे संसार चली छ आओ तबे जिते काम करू थांतो पछे के निजर केयर नबा निजर जत्न नबा बहुत जरूरी जेमिति कि छोटो छोटो कथा ठीक टाइम रे खाइबा ठीक परिमाण रे खाइबा ठीक जिनिस खाइबा एमिति नहो समस्त खाई दियंतु मु लास्ट को रहिले खाइबे नले नाही नाही आपण निजे ठीक रहिले आमे निजे ठीक रहिले आम फैमिली को भल देखि परिबा हने नै निजे कहंतु निजे सुस्थ रहिले समस्त केमिति सुस्थ रहिबे से विषय रे जत्नवान हे परिबा निजे भल माइंड रे रहिले भल माइंड रे काम क समस्तों को माइंड भल रही एक कथा राजी ना नहीं मु श्योर आपन राजी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के

0: 7 टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सर राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानी मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI.

0: series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland, and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
3: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally.
2: This is Suparna Bhatia from Rome.

ट्यून करिसेंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिलदार अभुला स्मृति रे परवर्ती गीत सुनि परिबे नागफासो फिल्म रो अक्षय महंती को वॉइस रे गीतटी को लेखिसेंती देवदास छोटराय म्यूजिक रे सजेसेंती अक्षय महंती

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज करी शंदी 14 रुस्तपुर रु रीना साहू डेडिकेट करी शंदी गीत सौभाग्य रंजन साहू सिपुंग को पई परवर्ती मेसेज करी शंदी जितेंद्र नियाली रु सुनिदबा से मानंग मनपसंद रे गीत स्टे ट्यून्ड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी

0: पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले दो से तीन दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने कार्यक्रम सुनुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र
2: नमस्कार। वर्तमान मुख्य संवाद सह संतोष कुमार साहू। चाषीमान सचेतनता सृष्टि आसंता पहलू देशव्यापी आरंभ हो खेत बचाओ अभियान कहले केन्द्र कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अध्यक्षतार नीट यूजी पुनः परीक्षा प्रस्तुति नहीं बैठक अनुष्ठित। परीक्षा को संपूर्ण त्रुटिशून्य और स्वच्छतार सह करने श्री प्रधान गुरुत्वारोप। आसंता प्रकाश पाइब सीएचएसई द्वारा परिचालित युक्त दुई परीक्षाफल। मध्याह्न 12:30 परिषद कार्यालय विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड परीक्षा फल पुस्तिका उन्मोचन करिवे। रविधान संग्रह नहीं विधायक आलोचना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र अध्यक्षतार नागरिक सेवा प्रदान कार्यदक्षता और डिजिटल सेवा व्यवस्था अग्रगति समीक्षा अनुष्ठित। एम्स दिल्ली सहयोग में राज्य में समन्वित जरूरीकालीन और ट्रमा केयर व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण नहीं स्वास्थ्यमंत्री डॉ मुकेश महालिंग प्रस्ताव। पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन भुवनेश्वर यूनिट 6 स्थित दुई गोटी रास्ता प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन कर आम बस सेवा संपूर्ण इभि हेबा नेइ नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र सूचना। राज्यर विभिन्न जिले में भोटर तालिका स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर संबंधी बैठक अनुष्ठित। ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि आसंता श्रीजीव बनकलागी नीति अनुष्ठित। बनकलागी नीति एक गुप्त नीति होइथिबारु संध्या 6:00 राति 10:00 जाए 4 घंटा सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिब। राज्यर वृद्धि पाउची तापमात्रा झारसुगुड़ा सर्वाधिक तापमात्रा 44.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड। मुख्य संवाद आज नमस्कार।
3: ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घर समय राति 11:07 12 सेकेंड शुणा आसंता कार्यक्रम संपर्क सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम।

0: यद्भूतं यच्च भव्यं तावदस्येषां यदन्येनानुरोहति।
1: जय श्री जगन्नाथ। पवित्र प्रभातर अनेक अनेक शुभेच्छा। आकाशरे उई गलेणी सूर्य, पक्षीमानंकर कुहु कुहु स्वर, मंदिररे भासी आसुचि घंट शंखर पवित्र ध्वनि, आउ एई भक्तिमय परिवेशरे आपण माने सुनिछंती एआईआर एफएम रेनबो कटक केन्द्रर प्रभाती कार्यक्रम अर्घ्यथाळी। आजर सकाळरे मु आपणंक साथी स्मृति रहिछि, आसिछि एई सकाळकु करिदेवि आहुरी भक्तिमय प्रभु श्री जगन्नाथंक नाम स्मरणरे। साथी ओडिशार आत्मा भक्तंकर भरसा नीलाचलनाथ से कालिया ठाकुर श्रीजगन्नाथ प्रभुंकर महिमा एमिति जे तांक पाखरे धनी गरीब जाति धर्मर कौनसी भेदभाव नाही, समस्तंकु से निज भक्त भावरे ही ग्रहण करंती। कुहा जाए जेउठि भक्ति अछि सेठी जगन्नाथ अछंती, जेउठि प्रेम अछि सेठी महाप्रभुंकर आशीर्वाद अछि। ताले बंधु सकाळर प्रथम प्रार्थना जदि प्रभुंक नामरे आरंभ हुए तेबे दिनटि मध्य शांति एवं सकारात्मकतारे भरी जायथाए। ताले आसंतना आजर ए सुंदर प्रभातरे आमे समस्ते मिसि महाप्रभुंकु प्रार्थना करिबा। हे नीलाद्री बिहारी, समस्तंक जीवनरे सुख शांति एवं समृद्धि भरी दिय, मनरु अहंकार दूर करी भल पाइबा एवं मानविकतार आलोक चलाई दिया।

साथी श्रीजीवर एक बन कला गिणीति साधारणतः विशेष तिथि एवं पर्वपर्वाणी में पालन करा दैतापति सेवक माने अत्यंत निष्ठा एवं भक्तिर सहित प्रभु शरीर में प्राकृतिक रंग चंदन एवं सुगंधित द्रव्य लगे दिव्य रूप प्रदान करती कहा जाए

आरम्भ गर्छु। अति बढी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवत, आज सुनन्तु यहाँ 39 तम भाग, प्रयोजना सुहास महंती।

सुन चंदे आकाश पानी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सौ चली छे सुबह सकल आपण माने आज रे सकल रे सुन चंदे आपण को साथी स्मृति को समय वर्तमान सकल 7:40

So my friends, welcome back. Tune kari chanti Akashvani FM Rainbow Katak 100.4 Dil Se Dil Tak. Apananka saathi Smriti ko sun chanti aajre sundar sakal re. And so chalichi obviously subha sakal. And samay hai galani 7 baje 51 minute. Amo Odisha sanskriti ebang aitihya re bharithiba ek dhani rajya. Tebe bandhu आसंदो जानी नबा किछि प्रसिद्ध संग्रहालय विषय रे ओडिसार ओडिसा स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर एठारे रहिछि पुरातन शिलालेख हस्तशिल्पी एवं विभिन्न प्रकार पुरातन चित्र एवं अनेक ऐतिहासिक सामग्री सेवळी ट्राइबल म्यूजियम भी रहिछि ओडिसार जनजाति जीवन परंपरा एवं कला को अत्यंत सुंदर भाबरे रखा जायछि संग्रहित कराइके कोणार्क म्यूजियम को जदि बुली जिवे सेठी सूर्य मंदिर सहित जड़ित अनेक ऐतिहासिक मूर्ति एवं कलाकृति संरक्षित ही रहितबार देखि परिबे एही संग्रहालय गुडेक आमको आम मूल सहित जोड़ी रखी छंदे फ्रेंड्स आजर डिजिटल दुनिया रे आमे सबो किछि मोबाइल रे देखि परुछु किंतु म्यूजियम को जाई संग्रहालय को जाई आमको तार सत्य तार इतिहास सहित मिसिबार सुजोग मिलिथाय एही संग्रहालय आमको शिक्षा देथाय गवेषणारे साहाय्य करे पर्यटन को बढ़ाए संस्कृति को जीवंत रखे पिलामानंक पई ए संग्रहालय होची गोटे जीवंत पाठशाला जो जाति निज इतिहास को भूली जाए ना से निजर परिचय को मध्य हरे देथाय तेणु आम समस्तंकर दायित्व आम ऐतिह्य को सम्मान करबा पुरुणा संस्कृति को संरक्षण करबा एवं आगामी पीढ़ी पई एहाकु रखी जीवा

बिल्कुल, तुम्हें आसो किसीबाट मुझे भी किसीबाट एमती ही गोटे सुंदर संपर्क तैयारी हो था साथी गोटे हृदय आ गोटे हृदय सहित एकाठी जो आरंभ होता है कि मीठा मुहूर्त कि

समय वर्तमान सकाळ 8:53 शुणिछन्ति सो मॉर्निंग मेलोडी ओनली ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाळ रे आपण माने शुणिछन्ति आपणक साथी स्मृति को तबे आज रे विश्व एड्स टीका दिवस रे आसंतु गोटे प्रॉमिस करबा सचेतनता ही सुरक्षा विदा नवा पूर्व गोटे छोट कथा मु आपणक कहबी जीवन अमूल्य स्वास्थ्य हेउची सबुठारु बड़ संपद सचेतन ही रहिले सुंदर हेबो आगामी पथ हाँ फ्रेंड्स तेणु सतर्क रुहंतु सुस्थ रुहंतु सचेतन रुहंतु एतिकी ही एफएम रेनबो रे स्मृतिर बार्ता आपण मानंकू।

0: बनाया।
1: चित्रहार प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे शाम 6 बजे
2: सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर।
1: हेलो,
2: अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होती है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जय जगन्नाथ, नमस्कार।
1: नमस्कार, जय जगन्नाथ, के कहते?
2: रेडियो लभर नारायण प्रधान, बी ब्रह्मपुर, बुगुड़ा जिला गंगा।
1: वेलकम करछु नारायण भाई आपण को। तेज कहतु आज टॉपिक उपरे आपण कौन आपण मत रखिए?
2: देखु आमर जो जुब्रा गोटे अच्छी म्यूजियम आठ तो अनेक थर जा बुला।
1: अच्छा, जोब्रारे से म्यूजियम नाटा कौन ना थी? समुद्र गर्भर जो जिन गुड़िक सब जिन सब
2: देखा मिलूना सब ट्रेन गले विभिन्न प्रकार सब जो घर सब पुराना काल घर आरिया सब बुले दस टा टिकट थी जाइली चार पांच वर्ष ते बहुत खुशी
1: कटक रो इतिहास रही वाणिज्य परंपरा जो रही तो सही सब जिन सब रही जोटा कि डंगा भितर के आगे जमी जाऊ वाणिज्य बोईत करने वाणिज्य करने जाते से सब जिन सब जगह रही शिलालेख से पाइबे से भितर एवं कौली भाव में डंगा या बड़ बड़ डंगा या बिल्कुल बिल्कुल
2: सब गोटे गोटे कोठे घर सब अलग अलग सब सब अच्छी सब जहाज बहुत जंत्रांश मतलब देखा मिले
1: निश्चय बहुत बढ़िया लगे। थैंक यू सो मच नारायण भाई आज कॉल कर।
2: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाल 9:11 बजे 11 मिनट अपनों का साथ ही स्मृति को सुनी चंती आज रे ब्यूटीफुल मॉर्निंग रे सो चली छी डायल इन लाइव एंड आज स्मृति अपन मन को पचारु छी जे एमिति को म्यूजियम जाई छंती कोन रही छी अपन कर अनुभूति ओडिसा रे भी बहुत गुडे म्यूजियम रही छी कटक रे बहुत गुडे म्यूजियम रही छी एंड जोडा ओडिसा बाहर रे भी और बहुत बड़ा बड़ा म्यूजियम रही छी तो को म्यूजियम जाई छंती बोलिबा पई एंड केमती सब थिला आपणकर अनुभूति आम सहित शेयर करंतु बिकॉज आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे आम सेलिब्रेट करूछु। हेलो
1: जी मैम नमस्कार गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग नमस्कार के कहो चंती
1: मु बामदेव कृष्ण बोलथली।
0: बामदेव भाई वेलकम करूछु आपणकु आकाशवाणी कटक को बहुत दिन परे आपण कॉल करले।
1: हां निश्चिंत सब दिन तो सुनु छी किंतु जो दिन बहुत इच्छा था फोन कर मैंने फोन टा करे मु किंतु बेले बेले लागे नी जाहो आज किंतु लागी गला
0: लागी गला जाहो माने ट्राई निहाती चेष्टा करले सफलता निश्चय मिलिवो।
1: हां नाही किंतु आप सबु डी चेष्टा करले सफल मिलिवो आपन क्षेत्र टिके कम
0: एमिति कोन दुनिया।
1: अच्छा बढ़िया दी बहुत बहुत भलो भलो टॉपिक आनन जी आज भल टपिक आनी कि गुडा गुडा दिन था आज निश्चिंत करी शहे थर चेस्ट कला लगे
0: लगे कौन भाग्य खराब
1: दुर्भाग्य सौभाग्य आज लगे
0: आज भल दिन लगी म्यूजियम कथा आलोचना करूजियम जाइंट बुलवाक
1: निश्चिंत भाव में जाटक तो आम म्यूजियम अच्छी नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय
0: बस बस हाँ से चाहूली कि जन कहतु
1: थर जा
0: अच्छा
1: विशेष कर जानुरी 30 तारीख दिन पूरा फ्री था प्रबल भिड़ था से दिन व्यतीत अन्य दिन गले पूरा फांगा सबकि देखे हुए नेताजी जन्मस्थान घर तर एंतुड़ीशा जहाँ कहते हैं एंतुड़ीशा अच्छी बाकी पढ़ा घर नेताजी करते गोटे बैंक कर गुटा अच्छी जमी म्यूजियम रेडियो स्टेशन गोटा कर नेताजी से
0: अच्छा
1: व्यवहृत बहुत मान बंदूक खंडा ये सब भी अच्छी बहुत किसी जिन देखार अच्छी आज पुराणा कालिया कुठा जो सब नेताजी थे से तो अति सुंदर पूरा से जगह आउ तार बगीचा फगीचा सीढ़ी मंदिर भी अच्छी
0: भारी प्राउड फील हुए नी माने कटक रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आमर माने निजर ए माटी रे जन्म होइथिले एते सब जिनिस रही छि तांकर तो देखले बहुत प्राउड फील हुए ना।
1: निश्चित भाव प्राउड फील हुए आम कटक रे भारत बर्ष रोग्य संतान मान मधु नेताजी अन्यतम आहां जन्म क्षेत्र हूँ कटक रे बेंगली थिले किंतु कटक रे तांकर जन्म एवं पिला शैशवटा
0: एठी ही तांकर कटिथिला बिल्कुल
1: कॉलेज स्कूल रे पढ़ीथिले रेवंचा
0: कॉलेज स्कूल रे हां
1: तनो एभले जने महान पुरुषंगर जन्मस्थान एठी अछि किंतु संग्रहालय एठी अछि ताकु निहाते समस्त आसि के बुली के देखला कथा
0: बिल्कुल
1: आ एबे तो नेताजी जन्मस्थान सामना रे उठे ही जे हमरो

ओके वेलकम बैक ट्यून करिछन्ति आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छै डायल इन लाइव 9:25 ऑलरेडी हे गणी स्मृति अपन मानको आजर सकाळ रे पचारु छै जे को म्यूजियम बुलीबा पई जाई छन्ति एंड कोन कोन सब देखि छन्ति कोन रहितला अपनकर अनुभूति अपन माने धीरे धीरे हम सहित शेयर करू छन्ति तो जो माने नुवा करकी मध्य सुन छन्ति भाबु छन्ति कॉल करबा पई एफएम रेनबो को आरे यार जमा भी भावंतुनी फटाफट कॉल करंतु नंबर टिपी रखंतु 0671230353 धीरे धीरे कोची 0671 कटक कोड 2303153 ए नंबर रे।

चोरी पिंधिबू। सुनी छदी आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सोई चली छी डायल इन लाइव आज सकाळ रे आपण माने सुनी छंती आपणक साथी स्मृति को देखिबा आ जने कॉलर आसी गेलनी।

मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, इंसान तो मिल जाते हैं हमें हर मोड़ पर, मगर हर कोई अनमोल नहीं होता ना आपके तरह. सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4, दिल से दिल तक. आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ, आपकी हम सफर होस्ट स्मृति. एंड यस, सो चल रहा है आपकी पसंदीदा रेनबो एसएमएस, जिसमें आप अपना पसंदीदा गाना हमको रिक्वेस्ट करते हैं और हम प्ले करवाते हैं इसको एफएम रेनबो कटक में. तो वे चलो, तो नेक्स्ट एसएमएस हम सहित प्रेमानंद महापात्र रामचंद्रपुर दुर्गापुर बांकी कटक रु आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सअप शुणा चाहती 1985 फिल्म सागर, फिल्म र सागर किनारे, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत. आशा भोसले सुरेश वड़कर कंठ से एंड डेडिकेट कर सब श्रोता मान समस्त गुड मॉर्निंग टू ऑल लिखी. ओके ठीक अच्छे, पहुंचुची आपण मनपसंद ब्यूटिफुल ट्रक प्रेमानंद महापात्र रामचंद्रपुर दुर्गापुर बांकी कटक को.

चलन्तु नेक्स्ट अनुरोध र गीत के करिछन्ति हमर मेसेज बक्स को जीवा व्हाट्सएप रे हम सहित कनेक्ट हेछन्ति डम्बरुधर रथ शर्मा सुरक्षा सहाय सहयोग भवन सेक्टर 13 सीडीए कटक रु सुनिया पे चाहिछन्ति राम तेरी गंगा मैली फिल्म र सुन साहेबा सुन लता मंगेशकर क कंठ रे डेडिकेट समस्तंको करिछन्ति गुड मॉर्निंग समस्तंको जणैछन्ति।

ओके ओके थैंक यू सो मच. एत सुंदर सुंदर गीत आपण मैंने रिक्वेस्ट करुँचे जहाद्वारा कि एफ एम रेनबो तो ओब्वियसली एनहांस होने मनपसंद गीत शुणीपुट एंड आम मन भी झुमी जाऊँ. थैंक यू सो मच दिल से. सो शो चली रेनबो एस एम एस आपने शुणी आपण स्मृति को आज सका आम सहित आउ जन बहुत सारा श्रोता मानी ओडिया नन ओडिया श्रोता आम सहित कनेक्ट होती आब्बास सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा अलीसा अपा तमन्ना रेड्डी कन्याकुमारी आर्यन सेन टाटा स्टील प्लांट रु तुतक तुतक तुतिया गीतटी शुणापी चाहते घर का चिराग फिल्म लिखिले गुड मॉर्निंग स्मृति अपा नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा.

आपण माने रिक्वेस्ट करुछंती जा द्वारा कि एफएम रेनबो तो ओबवियसली एनहांस होउछि आपण माने आपण मन पसंद रो गीत सुनी परुछंती एंड हम मन भी झुमी जाउछि थैंक यू सो मच दिल से सो सो चली छि रेनबो एसएमएस आपण माने सुनछंती आपण का साथी स्मृति को आज रे सकाळ रे हम सहित आउ जणी बहुत सारा श्रोता माने ओडिया नन ओडिया श्रोता हम सहित कनेक्ट हेइ छंती अब्बास सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज बिमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा अलीसा ओपा तमन्ना रेड्डी कन्याकुमारी आर्यन सेन टाटा स्टील प्लांट रु तुतक तुतक तुतिया गीत शुणापी चाहते घर का चिराग फिल्म लिखले गुड मॉर्निंग स्मृति अपा नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा स्टील परिवार तरफ ओडिशावासी को प्यार भरा नमस्कार आज अमर स्टाफ मनीष शर्मा फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी से दिल से शुभकामना अपा आम वाइफ पाई पदे कथा से लिखी चंती जे वाइफ अच्छा बोली अमरो माने नसीब आम सहित मिसिकी अच्छी सो मेरा नसीब अच्छा है अच्छा था जो कि आप मुझे मिले तो से तंको वाइफ को पहले की चंदे कथा ओके सो रोमांटिक सो चलन तो पहुंचो छी अपन को मन पसंद रा गीत घर का चिराग फिल्म रा तू तक तू तक तू तिया

लव यू ऑल यार, बहुत बहुत सुंदर सुंदर गीत है। जो गाना भूले बिसरे गाना भी आप लोग याद दिला देते हैं रेनबो एसएमएस के जरिए। सो दिल से थैंक यू। एंड चलो दो नेक्स्ट एसएमएस को जीवा। आम सहित सोमनाथ साहू जिगरण पटामुंडी केन्द्रापड़ कनेक्ट होती लिखले नमस्कार जय जगन्नाथ हैप्पी इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑफ टू स्मृति मैम। ओके प्रेजेंटेशन मॉर्निंग ट्रांसमिशन प्रोग्राम आर सो मच मार्वलस। सो स्पेशल थैंक्स टू आवर ग्लैमर सार्जे क्वीन स्मृति मैम, थैंक यू सो मच। सो सुनने पर चाहिए फकीरा फिल्म दिल में तुझे बिठा के लता मंगेशकर जी की आवाज में सुनना चाहते हैं सोमनाथ साहू जिगरण पट्टा मुंडे केन्द्रापड़ा।

सुन छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी रेनबो एसएमएस अपन मानकर अनुरोध रगीतर कार्यक्रम आ समय सीमित अपन मानकर अनुरोध रगीतर फरमाइश बहुत अधिक 10:22 ऑलरेडी हे गलानी सो चलंतु फटाफट नेक्स्ट व्हाट्सएप मेसेज सम सहित कनेक्ट हे जंती निर्मला बेहरा संतोष बेहरा नातुणी आद्यासा कांतो लाठगढ़ राम सहित कनेक्ट हे जंती लिखले जय श्री जगन्नाथ स्मृति मैम अपन आसिले किछि नुवा जिनिस जानिबार आशा थाए एई जेमिति आजि सकाळरे अर्घ्य थाळी रे जगन्नाथक बनक लागि बेस संपर्क रे अनेक किछि जानिलु सेति पई अशेष धन्यवाद थैंक यू सो मच कार्यक्रम भलो लागिथिबारु त अरविंद मुदुलिंक कंठरे सुनिया पई चाहि जंती गोटे ओडिया भजन झियो चाली गला कन्या हे ई गीतटी को सुनिया पई चाहिचंदी एटी कहि रखुची एटा कला शांत ओडिया आल्बम रो गीत भजन आल्बम रो गीत पहुंचौची आपनको आपनको मन पसंद रो ई सुंदर गीतटी

सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक उल्लास कुमार कांडी तंको भणजा सिबांशु नगर मेला सही अस्तरंग पुरी रु आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप लिखले अपाशुभ सकाल रेनबो अगणार समस्त अपा भाई भौणी मानंको आंतरिक शुभेच्छा शुभ सकाल आशा करुछि आपण माने प्रभु जगन्नाथंक कृपारु भलरे थिबे लिखले अपा म्यूजियम को नहीं प्रोग्राम टी बहुत भल लागिला आज बहुत सुंदर गीत भी बजे से आपको बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच साथी सुशुणिया चाहे जदि सुना पंजोरी टाइटल ट्रैक टी उल्लास कुमार कांडी मो भणजा सिबांशु नगर मेला साही अस्तरंग पुरी

बिल्कुल प्यार करने वाले कभी भी नहीं डरते और जो डरते हैं वो कभी प्यार नहीं करते और अगर वो प्यार दोस्ती का हो तो क्या कहना चाय की चुस्की और तेरी बातें चाय की चुस्की और तेरी बातें दिन की शुरुआत में हो मीठी मुलाकातें खुश रहे हमेशा खुश रहो हमेशा दुआ यही है मेरी सुप्रभात मेरे यार तेरी हर खुशी मेरे साथ है सो दुनिया के सब जो भी यार दोस्त सब है ना उन सबको कुछ गुड मॉर्निंग मैसेज भेजिए उनके साथ बात करिए अगर टाइम हो तो वरना दिल में उनके लिए कुछ मीठा सा प्यारा सा ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए तो हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप के माध्यम से स्वाति मोहंती कटक से जुड़े हुए हैं और सुनना चाहते हैं तेरे जैसा यार कहां ये फिल्म का गाना याराना मूवी का ये गाना है किशोर कुमार जी की आवाज में स्वाति पहुंचू जी तो पगकू ये सुंदर गीत अटी

बिल्कुल, दोस्ती अगर सच्ची हो ना, दुनिया याद करती है और हमारे अंदर ही वो दोस्ती का जो प्यार का जो एहसास होता है वो हमेशा रहती है। सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। आज सकाल रे आपण माने सुनि चंदी आपण का साथी स्मृति को समय वर्तमान 10:48। सो चलिछि रेनबो एसएमएस, बहुत सारा लव लेटर्स, क्या करे, चेष्टा करिबे समस्तंकर गीत को प्ले करबा पई, अनजदि गीत प्ले न होला ओबियसली ना समस्तंकर पढ़ी देवी। ओके, सो टुकु मिकी टिकी शिवानी मणियाबंधा बड़म्बर आम सहित कनेक्ट होती लिखले जय जगन्नाथ समस्त श्रोता मान ओडिया आलबम गीत अजणा बाटे गीत टी शुणापी चाहते आलबम रीत अजणा बाटे आलबम रीत प्रथम देखा आलबम रीत अजणा बाटे सॉन्ग टी शुणापी चाहते। ओके, पहुंचे आपको मनपसंद सुंदर गीत बाबुल सुप्रियो कंठ शुणु सुंदर गीत टी प्रथम देखा ओडिया आलबम रीत।

ओके सो आउ गोटिए लास्ट गीत मु निहाती भाबरे नेबी हमसे जुड़े हुए हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेश पुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी हमसे जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं रेनबो एसएमएस दिल से दिल तक जय जगन्नाथ जी आप कैसे हैं जी हम तो बहुत अच्छे हैं जी एंड आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे साजन की बाहों में फिल्म का गाना आपके करीब हम रहते हैं ये गाना सुनना चाहते हैं कुमार शानू जी और साधना सरगम जी की आवाज में नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से पहुंचाते हैं आपको आपकी पसंदीदा ये सुंदर सा गाना

अबे तो आप लोग तो हमेशा हमारे करीब रहते हैं क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है दिल से दिल तक। तेज 10:57 अलरेडी हेगलाणी कार्यक्रम को राउंड अफ करने पड़ तेज आम सहित हमारे साथ जुड़े थे महात्मा गांधी मार्ग मोतीनगर दिल्ली से हमसे कुछ श्रोताएं जुड़े हुए थे अनिल मानसी श्वेता गौरव अरोरा महात्मा गांधी मार्ग मोतीनगर न्यू दिल्ली। रमेश चंद्र साहू अहुकमा भापो ढेंकनल रु आम सहित कनेक्ट होते सेभली आम सहित कनेक्ट होते कल्पना महांती सोमप्रकाश भारत चंद्र नायक सीडीए सेक्टर 6 कटक रू।

0: अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ।

सत्यकाम चलचित्रर रंजना कहंतु प्यासी श्याम चलचित्रर मधु कहंतु सफर चलचित्रर डॉक्टर नीला कहंतु छोटी बहुर राधा अमर प्रेम कथाचित्रर पुष्पा कहंतु नहले नायक चलचित्रर अदिति कहंतु ना काहे कि बहुत सारा बहुत क्यारेक्टर आम देखा पाइल बहुत चरित्र से सामना को आसी बॉलीवुड कथाचित्र तेणु साथी आज कलाकार कार्यक्रम जन अभिनेत्री विषय में कथा जीक प्रथम थर पर बॉलीवुड रे बोल्ड ग्लैमरस लुक रे समस्त सामने देखा दे परदारे चलचित्र सुपर डुपर हिट सब चलचित्र सहित चलचित्र गीत गुड़िक समस्ते भल पाऊ

0: बॉलीवुड फिल्म रो ग्लैमरस फिल्म मध्यरु बोधवे गोटी सुंदर फिल्म टी होची एन इवनिंग इन पेरिस जहा कि 1967 रो रिलीज होइतला साथ ही चलचित्र रे आमी शर्मिला टैगोर को मॉडर्न लुक रे देखिबा को पाइथिलु जहा कि से निजरो एक्टिंग को नै कि सेतबेला समय रे बहुत ही चर्चा रे थिले तेनु एन इवनिंग इन पेरिस कथा चित्र रो हमरो चर्चा चली छी माने केमती गीत सुनैबिनी कहले सुन दियंतु मीठा गीत टी
1: अरे बस बस बस बस सापे रुक गया आगे बढ़

0: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहन्तु।
1: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाल बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांति लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
0: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुड़िक हेउछि सकाळी किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहर को जांतु। बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु। हालुका रंगर ढिला पोशाक, छत्ता ओ जोता व्यवहार करंतु। खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही, मझिरे मझिरे छाईरे विश्राम नियंतु।
1: अंशुघातर प्रतिकार गुड़िक हेउछि रोगी को खोला ओ थंडा जगह को नी ओआरएस किंबा चीनी लुण सर्बत अथवा साधा पानी पियंतु। पोशाक गुड़िक जथा संभव खोली दियंतु, मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़े पोछंतु। रोगी को पंखा, कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु। अवस्थारे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
0: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला अंशुघातर आशंका अधिक रही।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।

शब्द बिना भी बहुत कथा कही हुए जेबे दुई आखि परस्पर को छुए ओठर भाषा तो बुझंती समस्ते किंतु आखिर भाषा केवल खोजे हृदय रास्ता केबे लुह होइ झरे गप हिसाब रे तो केबे हसरे थाए अनेक गुमर आखिर इशारा रे खोली जाय द्वार जहां कहि हुएनी तहां कहि नयनर धार नीरवरे से किछि कथा कहि जहां मन भितरे केवल रही जाए दूरता थाई भी लागे से पाखरे कारण आखि तो सबबेले कथा कहे तेणु साथी आखि तो एते कथा कहुछि आमर एते कथा कहबा किछि दरकार नहिबो बस आमे खाली काम करबा एवं जो समय रे आमे बहुत किछि कथा कहि के आमर एनर्जी को लॉस करूछु सेही समय रे जदि आमे आमर कोनोसी गुरुत्वपूर्ण काम कर देबा ना तले आमर ही भलो

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक

प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।